0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों की साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria.

0: మీరింతవరకు అలుపెరుగని బాటసారి అక్కినేని ప్రత్యేక కార్యక్రమం విన్నారు. రచన శ్రీ కె పూర్ణరవిచంద్ర కుమార్, వ్యాఖ్యానం నిర్వహణ శ్రీ ఎన్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, సహకారం శ్రీమతి డి రాజ్యలక్ష్మి. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ.
1: పద్మవిభూషణ్, దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు గ్రహీత తెలుగు చలనచిత్ర నట మేరు శిఖరం డాక్టర్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం విన్నారు.
2: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మైం ముఖేష్ కుమార్. राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं. समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है. सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है. एक रिपोर्ट.
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है. जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी. सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है. मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक बीएमडब्ल्यू कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी. घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते. एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा. उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं. निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है. इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है. श्री राजनाथ सिंह ने कहा ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है. श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है. भारत ने जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है. एला वेनिल वेलारिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया. चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता. जापान को कांस्य पदक मिला. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी. डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है. जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है. भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए. इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था. चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा. भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3 जबकि लाल थन तुलांगे और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference has been organized by the National Green Tribunal, NGT. We have a report.
5: The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices, and institutional experiences across jurisdictions. The conference witnessed the participation of environmental experts, judges of the Supreme Court of India and High Courts, district court judges, secretaries of various ministries, senior government officials, and other stakeholders. It also brought together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. It facilitated dialogue on critical environmental and climate challenges, including gaps in policy formulation, implementation and enforcement, and explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
4: Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from the 1st of October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. Linking its connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. Minister of Petroleum and Natural Gas has said the process is not meant to deny LPG to any genuine household and every eligible consumer has several easy ways to complete it. In Mumbai, 2 people were killed and 4 others injured after an electric shock at a temporary drinking water stall near Ganesh Utsav Mandal in Kala Chowki early this morning. The injured were taken to a nearby hospitals. Of the injured is reported to be a critical condition, while 3 others are reported to be stable. In another incident in the state, 3 people were killed and 1 injured after a BMW car met with an accident on Mumbai's coastal road early this morning. The injured person has been admitted to hospital. Further investigation is underway. Senior journalist Payal Mehta passed away in Mumbai this morning. She was 46. Ms. Mehta, who was visiting the city, experienced sudden uneasiness and was rushed to a hospital where she breathed her last. Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Amit Shah, Rajnath Singh and Ashwini Vaishnav have expressed condolence on her demise. Tensions have escalated in West Asia after Yemen's Houthi fighters launched missile and drone attacks targeting Saudi Arabia. Amid heightened regional tensions, the United States has urged its citizens to reconsider travel to and through the West Asia, warning of possible rapid escalation, flight disruptions and attacks targeting U.S. interests. On to sports. In Asian Games 2026, India's campaign continues strongly on day 2 in Japan today. India secured the silver medal in the women's 10-meter air rifle team event with Elavenil Valarivan, Sonam Muskar and Vidarsha Vinod combining to deliver the country's first medal of the Games. The Indian trio finished with a team total of 1,898 points, placing them behind China in the standings. Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandavia congratulated the team on winning the medal. In a social media post, Dr. Mandavia wished the champions and the entire Indian contingent many more moments of glory. India's Elavenil Valarivan clinched a silver medal in the women's 10-meter air rifle event at the Aichi Nagoya Asian Games in Japan today. She added the individual silver to the team silver she won earlier in the day. In hockey, the Indian women's team began the Asian Games 2026 campaign with a dominant 19-0 win over Uzbekistan in the Pool B opener at the Gifu Prefectural Green Stadium in Japan today. In women's cricket, India set a target of 196 against Bangladesh in the second semi-final of the Asian Games at the Korogi Sports Park in Japan. Earlier, India won the toss and opted to bat first. Shefali Varma has made history as she brings up a maiden white ball international 100 and becomes the first batter to score a century in the Asian Games. Meanwhile, opener Smriti Mandhana has become the leading run getter in the women's T20Is, surpassing New Zealand great Susie Bates' tally of 4,758 runs. And that is the end of this news bulletin.

0: जागते रहो जागते रहो।
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो।
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत
1: जागरूक भारत
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत सोमवार।
2: पीटर साहब भी उसमें थे।
3: वाह
2: पीटर साहब और दोराडो साहब बड़े बड़े नाम और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी वो आज तक बजा ही रहा हूँ।
3: गजब गजब क्या बात है
2: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं केरसी मुझे बोलते केरसी उत्तम तूने बजाया तो ठीक है फील नहीं है।
3: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं। ओहो
2: ये 64 की बात
3: जी।
2: अब फील ही फील है।
3: ये कहां से आया
2: ये लग गई मेरे बात में कहा फील क्यों नहीं है। पहला सोलो था
3: जी
2: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं
3: जी।
2: मदन साहब के यहाँ नौशाद साहब के यहाँ पाकिजा ये सब सोलो मेरे हैं
3: बिल्कुल।
2: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि आ गया है कोई
3: एक वायलिनिस्ट
2: समबडीज
3: एंट्री हो गई
2: समबडीज जी।
3: बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं और ये तमाम चीजें हैं। हम 63-64 के जमाने में हैं तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए आप बताएंगे कौन सा गाना सुने।
2: 1960 में फिल्म आई थी मुगल-ए-आज़म और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो हाँ क्या मतलब हमारा हाथ जो था छाती पर था ये कैसे कर सकते हैं ऐसा काम
3: जी।
2: हम लोग सब यही होता था यार ऐसा काम कैसे हो सकता है
3: करिश्माई काम है
2: करिश्माई का। और वो गाना देखिए 1960 का जो गाना है रिलीज हुआ बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58 में बना होगा।
3: हाँ।
2: जब प्यार किया तो डरना क्या
3: क्या बात है ये गाना सुनते हैं
2: इस गाने को सुनते हैं।

0: कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने यहाँ मुगले आजम का जिक्र कर दिया है और मुझे ये पता है कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है। मैं कहानी नहीं बताता, आप ही बताइए कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।
1: देखिए जी, ये भी भाग्य की बात है कि एक टाइम तो हम मुगले आजम देख रहे थे और तरस रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और वही मुगले आजम 2003 में
0: कलर होके आती है,
1: कलर होके आती है और पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है। तो नौशाद साहब के कानों में गया, तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो हूँ अभी। नौशाद साहब बोल रहे हैं मैं तो हूँ और राइट्स भी मेरे पास है। तो फिर वो सब जो भी बातें हुई वो फिर हमारे पास आई, तो नौशाद साहब ने कहा कि उत्तम, मुगले आजम आई है, कलर हो रही है और उनको स्टूडियो करना है,
0: पूरा म्यूजिक भी,
1: पूरा म्यूजिक
0: मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
1: सब, सब सब सब सब सब कुछ स्टीरियोफोनिक करना है। तो मतलब वही
0: भव्यता
1: चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो हमारे पास मुगले आजम में सिर्फ एक ट्रैक,
0: जी बिल्कुल,
1: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी,

0: ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी
1: सारे हैं,
0: और उस ट्रैक में
1: हिसिंग भी है,
0: ये चल रही है।
1: अरे बाप रे,
0: 1960 की पिक्चर है, इसको कहां से निकालोगे? तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये साउंड कहते हैं, मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकालता हूं। तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड, साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे थे वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था।
1: जी जी,
0: 50% अभी भी था। वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के, मैंने अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय, तनय गजर, जो आवाज स्टूडियो का मालिक था,
1: जी जी,
0: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7-8 दिन ये गए
1: जी,
0: उसके बाद में, क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
1: बाप रे,
0: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा पूरा। जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया।
1: जी
0: अच्छा, अब नोटेशन तो लिख लिया गाना, क्योंकि गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने, लिख लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है। ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे आज का बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
1: मैं जानता हूँ।
0: मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है। पूरा स्कोर लिखा गया,
1: बैकग्राउंड का पूरा,
0: बैकग्राउंड का पूरा स्कोर लिखा गया है।
1: ओ गॉड,
0: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने लग गए।
1: और गानों के नोटेशंस करने में
0: भी
1: अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन होंगे, कि वायलिन के ये हुए, वायला के हुए।
0: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किए थे, हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए।
1: इतने म्यूजिशियन किस स्टूडियो में समाए?
0: पार्ट बाय पार्ट।
1: अच्छा,
0: उस टाइम तो लाइव थे
1: जी, यहाँ तो
0: अभी
1: ट्रैक थे।
0: और इस मुगल आजम के दौरान हमने 12 वायलिन, 6 व्योला, 4 चेलो और 2 बेस, ये हमने मद्रास से मंगाए थे।
1: बाप रे बाप रे,
0: ये हमने मद्रास से म्यूजिशियन आए, यहाँ रहे 7 दिन। 7 दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग बजाई उन्होंने अपने पार्ट्स,
1: गजब।
0: खाली वायलिन्स के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया, फिर रिदम आई, फिर सितार आई, फिर तबला आया। ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लग गए इसको।
1: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के,
0: आराम से।
1: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए,
0: पूरे,
1: लेकिन गायक की आवाज सेम रखी गई।
0: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही। आपको, आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
1: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक, जो जो डॉल्बी आप लोगों ने किया था,
0: जी, जी।
1: उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूस बम्स आ जाते हैं। मुझे याद है कि मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसेस है, बहुत लंबे, बहुत लंबा पीस है,
0: बहुत लंबा,
1: 2.5-3 मिनट का पीस
0: किए हुए
1: जी।
0: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो सितारे बज रही है, वो रखा हुआ पहले का।
1: हाँ हाँ, उसी के ऊपर बजा
0: दिया, उसी के ऊपर बजा हुआ। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा, कितना माइन्यूट काम है।
1: जैसे इस तरह से,
0: जैसे पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है।
1: इस तरह से मुगले आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया,
0: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा, मजे की बात ये है, देखिए मुगले आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगले आजम के ऊपर 1,60,00,000 रूपये खर्चा हुआ
1: जी,
0: उस टाइम पे। मतलब आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो,
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया। अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा। अभी ये जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है।
1: जी जी,
0: बकायदा बिल्स है हर चीज के, 1 करोड़ रुपए पूरा म्यूजिक के ऊपर। और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया, वो तो सब जो है सो है सो।
1: जी
0: मतलब उस टाइम पे भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने।
1: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म,
0: आज भी अगर 6-7-7-8 करोड़ खर्चा किया तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया वापस। और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने,
1: जी बिल्कुल अलग जनरेशन थी,
0: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
1: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन डॉल्बी डिजिटल देखें, तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है, और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए,
0: बिल्कुल हो जाए। वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाइए,
1: जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद,
0: क्योंकि क्या है उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज किया,
1: बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वो जिस तरह से ऊपर जाता है, वाह वाह, कुमार साहब पर फिल्म आ गया,
0: ये सुनाइए,
1: सुनते हैं।

0: देखिए बातों को थोड़ा फ्लैश फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो मुगले आजम का रिक्रिएशन है ये बहुत कम लोगों को पता है
1: जी जी
0: कि ये संगीत आपने
1: तो यहाँ मैं एक
0: किया
1: बात
0: था।
1: बता दूं, इस दौरान जो है ना मेरा जो लड़का है गुरमीत,
0: जी
1: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर।
0: जी जी जी
1: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है, वायलिंस की डबिंग है, वो सब लिखना, वो सब उसने किया हुआ है। बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई। जी
0: जी
1: जी
0: क्या बात है। वापस चलते हैं 1964 के जमाने में जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेस भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन जी।
1: देखिए जी, नौशाद साहब क्या थे, उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि
0: हाँ
1: मोहम्मद शफी साहब थे,
0: जी
1: लेकिन उनके साथ कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है।
0: इतना लंबा समय निकल
1: जी
0: गया।
1: जी क्योंकि शफी साहब काम करते थे, हम लोग बजाते थे, तो
0: जी
1: जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ, मैं घर गया। जी

0: पीने, चाय पीते हैं, चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहा ये तो नौशाद साहब का घर है,
1: आशियाना।
0: आशियाना। मैं कहा चाचा यहाँ क्या? चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए, रूम में बैठ गए। नौशाद साहब ऊपर से आए, बोले आओ सभी मियाँ, किसको ले आए? इसको किसको ले आए? ये कौन है? देखा तो हुआ है इसको, अपनी रिकॉर्डिंग बजाता है ना, शायद वायलिन बजाता है। हाँ जी वायलिन बजाता है। तो क्यों लाए उसको यहाँ पे? मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा।
1: गजब।
0: क्योंकि मैं अब, मेरे से अब काम नहीं होगा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आज से उत्तम आपका काम करेगा। तुमको इतना भरोसा है इस पर? बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा, कर लेगा ये पूरा काम। बोले हाँ। वो पहली मुलाकात थी।
1: वाह वाह वाह। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है।
0: नौशाद साहब सामने बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, मैं बैठा हुआ। तो बोले ठीक है, तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी, वो बैठते थे, एक सामने कुर्सी थी,
1: जी जी
0: जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठा हूँ, तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा उनके साथ।
1: आज भी है वो उसी जगह,
0: आज भी वो कुर्सी। और उस कुर्सी पर
1: रफी साहब भी बैठते थे,
0: बड़े बड़े सिंगर बैठे हैं,
1: जी
0: गुलाम अली साहब से ले, आमिर खान साहब से लेकर प्रसुल्ले साहब के, रफी साहब, लता जी, आशा जी, सब उस कुर्सी पर बैठते। वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे बैठा जी। आओ उत्तम, आओ उत्तम साहब। ये बड़ी खूबसूरत वाक्य है,
1: जी जी
0: तहजीब और इज्जत,
1: जी
0: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
1: क्या बात है।
0: मैंने उनको कभी तू बोलते नहीं सुना,
1: जी
0: कभी तुम बोलते नहीं सुना। तो मुझे उत्तम साहब, तो मैं उनको जी, नाम तो मैं उनका ले नहीं सकता था, तो जी जी जी करके बात करता था, या अंकल बोल देता था। कल सफी मियां आपको छोड़ के गए और कहे गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप इस लायक समझते हैं तो। क्या लोगे रिकॉर्डिंग का? मैंने कहा जी आप जो दे देंगे। नहीं नहीं नहीं आप बताओ क्या लोगे। ये देखिए ये बात है 72 की।
1: जी जी
0: क्या उम्र होगी मेरी? 48, 58, 68, 24 साल की उम्र,
1: जी जी
0: 23, 24 के।
1: जी
0: तो मैंने कहा अंकल मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज्यादा पैसे भी आपने लिए,
1: जी
0: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए। हंस पड़े, बोले हाँ सही बात। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि अरेंजरों में सबसे ज्यादा पैसे मैं लूँ।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का।
1: हाँ।
0: तो मैंने कहा अंकल 750 रुपये रखेंगे आने का।
1: हाँ।
0: वैसे उस टाइम पे 200, 250, 300 रुपये में काम कर रहे थे लोग।
1: तो ये 3 गुना मांगा?
0: 750 मांगे
1: जी।
0: बोले ठीक है
1: 750 रुपये एक गाने का। गजब।
0: बोले ठीक है। और यूनुस साहब ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो, वो जो बोलेगा वही करना।
1: वाह।
0: और 35 साल मैंने उनके साथ काम किया।
1: बाप रे 35 साल नौशाद साहब के साथ काम करना, मतलब एक पूरे युग को जीना।
0: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम, हाँ, कितना नजदीक आ गए होंगे, कितना समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहाँ गई सीखने के लिए।
1: अच्छा।
0: हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है
1: जी।
0: तो प्रीति बोले डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए, अबू के पास ले चलिए। मैं ले गया। वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं उत्तम साहब नहीं रहा, मैं उत्तम हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह। प्रीति की वजह से ही हुआ।
0: प्रीति की वजह से, मतलब अब तक वो मुझे उत्तम साहब बोल रहे थे, प्रीति आ गई, वो इतना प्यार हो गया इनमें, इतना वो मतलब वो अबू और प्रीति, अबू प्रीति। और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं। उत्तम कहाँ है? मैं कहा बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्ग जब
1: नाम लेके पुकारते
0: हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी
0: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे, मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे।
1: हाँ।
0: पता नहीं क्या बात।
1: अरे
0: हाँ पता नहीं, आई डोंट नो। उत्तम जी आ गए बेटा।
1: वाह।
0: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया और फिर उनके जनाजे तक मैं साथ में था।
1: जी नौशाद साहब की और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे, यहाँ पहले उनका एक गाना सुनते हैं। अभी मदन मोहन जी वाली बात बाकी है, उसको
0: नहीं, पहले नौशाद साहब का एक गाना सुना दीजिए जो मेरा उनके साथ पहला गाना है।
1: जी
0: माई फ्रेंड का गाना है वो।
1: हाँ हाँ
0: रफी साहब का गाया हुआ गाना है। नैया मेरी बहती जाए, ये मेरा पहला गाना उनके साथ।
1: वाह वाह वाह, ये सुनते हैं उसके बाद।
0: ये सुनिए, उसके बाद फिर हम मदन साहब के ऊपर चलते हैं।

0: नौशा साहब की बातें तो और होंगी, ये गाना हमने सुना। एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का।
1: जी जी
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुना है, हमारे सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सा गोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी ये शायद 1963-64 की बात होगी,
0: जी
1: जब उनके यहाँ डैडी 2-3 दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं।
0: हाँ, बहुत बिजी थे।
1: बिजी रहते थे और उस टाइम पे म्यूजिशियंस जाते थे सुनाने, तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथी बार चांस मिल गया, मदन साहब मिल गए बाहर। उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब करके,
0: जी जी
1: वो बाहर बैठे हुए। तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूरी साहब अंदर गए तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके, हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए, नमस्ते की उनको। हाँ जी आइए, बैठी बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सो एंड सो है। ये कौन है? बोलते इज माई फादर, मेरे डैडी बोलते हैं उनको, इज माई फादर। तो मदन साहब को अच्छा नहीं लगा। व्हाट डू यू मीन? सर वो कहते हैं ना, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन।
0: ओ
1: यू मीन दैट? यस। हाँ क्या करते हैं? ये वायलिन बजाता है। अच्छा सुनाओ। तो मैंने वायलिन खोली और वही पोलका बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया था, फेलिक्स,
0: जिसकी दास्तान आप पहले बता चुके हैं।
1: फेलिक्स हेरडे साहब ने वो पोलका सिखाया था।
0: जी
1: वो पोलका कुछ 9-10 मिनट का है, और वो पोलका ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है। तो वो सुनते रहे,
0: जी
1: क्योंकि संगीतकार थे, उन्होंने सब देखा हुआ था। सुनते रहे 10 मिनट के बाद में जब मैं ऐसे, मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे। फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ। तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया।
0: गजब।
1: ये पोलका के बाद मैंने उनका गाना बजाया।
0: वाह।
1: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए। यूनुस जी आप सोचो कि वो दिन गया और उनका लास्ट गाना

0: ढूंढता है, आई वॉज कंडक्टिंग।
1: क्या बात है, मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे, तब से लेकर आखिर 75 तक उनका साथ रहा।
0: सबसे पहला नाम की लिस्ट में मेरा होता था।
1: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरा ख्याल है 1975 में आई थी ये फिल्म।
0: तो
1: मौसम।
0: हाँ, इसी दौरान मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी, तो उस टाइम पे केसी ने भी

0: खन्ना के साथ भी हुआ करते थे।
1: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे, अरेंजर्स मुझे याद नहीं।
0: जी।
1: रवि साहब क्या उन्होंने बहुत काम किया।
0: हाँ,
1: रवि साहब क्या बहुत काम किया, तो हम सब बजाते थे साथ में। ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था। तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग, तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया, हम लोग करा के बैठ गए। तो मदन साहब आए 9:45 के करीब।
0: जी
1: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब। हाँ ज्ञान सुनो, तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने। फिर उन्होंने बोला म्यूजिक वन सुनाया, तो वो बैठ गए। एक्चुअली खड़े हुए थे तो कुर्सी पे बैठ गए, और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
0: पसंद नहीं आ रहा है,
1: कुछ इनको म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। तो वो गाना था, हर तरफ अब यही अफसाने, तो ये गाना था, और मैं बजाते चले गया।
0: हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गाना,
1: हिंदुस्तान की कसम, और मैं ये गाना बजाता चले गया। 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ है और एक लड़का वायलिन बजा रहा है।
0: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा
1: है, उसके बावजूद भी वो गाना मैं बजाता रहता।
0: ये किस धुन पे किया था
1: पता नहीं, आई डोंट नो
0: जी,
1: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता नहीं,
0: क्योंकि मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर
1: था। लेकिन क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं कहा
0: जी,
1: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था।
0: हाँ,
1: मैं उनका ही गाना दारारी रारी यही बजा रहा था। बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया
0: अपनी तरफ से,
1: बज गया। मैंने जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया। तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते, व्हाट डिड यू प्ले इट, मेरे तो पसीने छूट गए। एसी में मुझे पसीना आ गया। सर, आई सेड सर नथिंग, व्हाट डिड यू प्ले इट जस्ट नाउ, एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी। मैंने, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, अपने सर या आई प्लेड दिस, तारारी तर तारी ये बजाया मैंने।
0: हाँ, वो एक पीस आप वायलिन लाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये सुनाएं हमको।
1: लाया तो हूँ।

0: जान, ये जो उत्तम बजारा है ये फर्स्ट म्यूजिक होगा एंड सोलो वैलिड होगा एंड उत्तम रिप्लेस सोलो वैलिड।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: यहां से यूरजी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन,
0: बहुत गानों में सोलो बजाया
1: जी। कुछ गानों का जिक्र हो जाए,
0: मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत से गाने हैं
1: जी।
0: हाँ, ये गाना याद है मुझे।
1: जी। हर तरह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण

0: एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दो दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोध संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबायनिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबायनिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देशभर में 1100 यूक्रेन के ड्रोन मार गिराया है। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मैच में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times stresses the urgent need for strong climate action to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. She called for stronger cooperation among stakeholders at the local, regional and global levels to address the challenges posed by climate change.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: President Murmu said farm ponds can help local communities in water-stressed regions. On the first day of the conference yesterday, Prime Minister Narendra Modi addressed the gathering. The Indian Air Force and the Japan Air Self-Defense Force are conducting bilateral air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur to bolster defense collaboration. The fourth-day exercise, which will conclude on Tuesday, involves a diverse mix of Indian Air Force frontline combat aircraft, including the indigenous light combat aircraft Tejas, Su-30 MKI and Rafale, while Japan is participating with F-2A fighter aircraft. Japanese Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew a Tejas jet with a pilot, while Air Chief Marshal AP Singh flew solo on the Tejas jet as part of their sorties under the Indo-Japan bilateral air exercise. Talking to media in Jodhpur during an ongoing bilateral air exercise, Air Chief Marshal Singh said, Japanese fighter aircraft operating from Indian soil for the first time marks a major milestone in defense cooperation between India and Japan. Union Minister of State for Defense Sanjay Seth today witnessed an air show by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team at Meerut in Uttar Pradesh. The defense minister said the two-day air show began yesterday, drawing more than 1 lakh spectators, including students, NCC cadets and NSS volunteers. Speaking to media, Mr. Seth described the performance as a remarkable demonstration of

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रूपये का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय

0: है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था।
3: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रूपये के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रूपये के इनाम में झारखंड झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
4: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं।

0: भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
1: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
0: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित दो दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
3: सूर्यकिरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
4: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
2: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक पगली। ये नाटक देवदत्त हरिभाऊ रुकड़ीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर है। हिंदी रूपांतरकार हैं पुरुषोत्तम जोशी और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक पगली।
1: जोशी साहब, आपने कभी लड़कियों का मजाक उड़ाया है, उन्हें छेड़ा है?
2: घोर बेइज्जती है।
3: क्यों? कोई बॉस हमें किसी काम लायक नहीं समझता है, पत्नी किसी लायक नहीं समझती। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने जवानी के चार दिन देखे ही नहीं है?
2: अरे बापट भाई, हमारे बाल सफेद क्या हुए, तुमने हमें पैदाइशी बूढ़ा मान लिया। भाई तुम लड़कियों का मजाक उड़ाते हो या नहीं, छेड़ते हो या नहीं?
1: अरे जोशी साहब, हमारी तो उम्र ही है लड़कियों का मजाक उड़ाने की।
2: अच्छा, डॉक्टर ने हमें भी तो मना नहीं किया, क्यों ठीक है ना देशमुख?
3: और क्या। अरे बापट मांजरेकर, हम भी कभी जवान थे।
2: पर दुर्भाग्य से हमारी शादी हो गई और कहानी में सितार की जगह सारंगी ने ले ली।
4: पर भाई वो मजाक उड़ाना या छेड़ना तमीजदारों की तरह होता था, पिटने और गाली खाने वाला नहीं। हाँ,
5: अरे आपके समय की बात अलग थी, अब तो मिलावटी जमाना है।
1: अच्छा जोशी साहब, हमारे ये देशमुख साहब कैसे थे,
4: तमीज की कमीज वाले या हमारी तरह के?
2: ये देशमुख पूछो मत, तुम्हारे से छोटी उम्र का था तभी से नौकरी कर रहा।
1: अच्छा,
2: मगर जब ये कुवारा था तब भी इसके अंदर एक शादीशुदा प्रेत की आत्मा बसती।
5: शादीशुदा प्रेत की आत्मा मतलब?
2: मजाल है जो देशमुख ने किसी टाइपिस्ट की तरफ नजर उठाकर देखा।
1: अच्छा,
2: हम भले और हमारा काम भला हो, पर आज ना वो जमाना रहा ना वैसे लोग, अब तो कर्णिक जैसे बंदों से ऑफिस भरा पड़ा है।
5: अरे हाँ जोशी जी, कर्णिक की बात पर याद आया, ये तो बताइए कि बड़े साहब ने कर्णिक को बुलाया किस लिए था?
2: हाँ, बड़े साहब किस लिए बुलाते हैं ये आपको नहीं मालूम? अजी साहेब, बड़े साहेब ने बुलाया है तो समझिए कि आज
4: चंपी चंपी बोलो चंपी चंपी चंपी बोलो चंपी।
1: अरे कर्णिक के सामने तो लड़की बैठती है, कहीं उसने कोई शिकायत तो नहीं कर दी कर्णिक के अगेंस्ट?
2: कर्णिक हमेशा मजाक उड़वाता रहता है उसका।
3: अजी साहब, अपने ऑफिस में चार पांच दिन पहले जो एक लड़की आई है ना, वो उसका भी हमेशा मजाक उड़ाता है।
2: कौन सी लड़की?
3: अरे वही जो मांजरेकर के टेबल के बाजू में बैठती है।
1: अरे मिस साने, क्या लड़की है साहब। अरे सच में ऑफिस में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की ने काम नहीं किया कभी।
2: बापट बापट, तुम बता रहे हो या अपने आप को याद दिला रहे हो?
1: बता रहा हूँ जोशी साहब,
2: दिल पर हाथ रखकर इतनी मीठी आवाज में।
1: आप भी ना।
3: अरे चलो भाई चलो, बहुत काम पड़ा हुआ है।
1: हाँ चलिए चलिए चलिए, आइए। अरे बस क्यों नहीं आ रही है? जोशी साहब,
2: हाँ बोलो करने।
1: हमारे ऑफिस में वो जो नई लड़की आई है ना, मिस साने। हाँ मिस साने। अजी साहब, वो हाफ मैड है।
2: हाफ मैड?
1: हाँ हाफ मैड।
2: कैसे?
1: तुम्हारे थोबड़े पर कुछ दे मारा क्या उसने करने का? अजी साहब, बड़ी अजीब लड़की है।
3: अरे आखिर हुआ क्या?
1: अरे बात ऐसी हुई कि कल मैं लंच ब्रेक में आपकी तरफ आ रहा था,

0: रास्ते में वो मुझे मिली, उसकी तरफ देखकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, डार्लिंग करने, तुम मुझे बहुत पसंद हो, चलो ना हम शादी कर लें, हाँ कहीं दूर भाग जाए। और मेरे गले में बाहें डालने आगे बढ़ी। अरे मैं तो इतना घबराया कि बस, आप ही कहिए कोई ठीक ठाक लड़की ऐसा करेगी क्या? अरे पगली है वो पगली।
1: अरे तुम भी बड़े फेंकू हो कर्णिक,
0: हैं?
1: किसी भी शरीफ सभ्य स्त्री का अपमान करके तुम्हें बहुत आनंद आता है।
0: मिस्टर मंजरेकर, मैं तो मिस साने के बारे में बात कर रहा हूँ, और मिर्ची आपको लग रही है, हैं? कोई लगती है क्या तुम्हारी?
2: अरे कर्णिक, वो मांजरेकर की टेबल के पास बैठती है, इतना संबंध काफी नहीं है क्या?
1: देख कर्णिक, लगती तो कोई नहीं है, मगर तुम किस किस्म के आदमी हो ये पूरा ऑफिस जानता है। हर लड़की के बारे में तुम्हारे विचार बड़े ही ऊंचे होते हैं। तुम में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है। मिस साने पगली है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास?
0: सबूत? मेरे पास सबूत है, पूरा पूरा सबूत है।
1: तो दीजिए ना सबूत।
0: आपके सामने जो मिस्टर बापट है ना, आप उनसे ही पूछ कर देखिए।
1: बापट, तुम्हारे साथ क्या किया उसने? कर्णिक सही कह रहा है?
2: हाँ मांजरेकर, कर्णिक का कहना सही है, मिसाने एक पगली है भाई, ये बात सच है। मैं सबसे बताना तो चाहता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई।
0: क्या कह रहे हो, मिस साने पगली है? तुम्हारे साथ क्या किया उसने? मिस्टर मांजरेकर, आपके टेबल के नजदीक वो जरूर बैठती है, लेकिन याद रखना, उससे ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाना, उससे दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मत पड़ना। पगली है वो, और पागलों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा।
3: हे भगवान, नियति भी क्या क्या खेल दिखाती। भाई कौन सोच सकता था कि इतनी सुंदर लड़की पगली होगी। बेचारी। चलो भाई चलो दोस्त।
1: अरे जोशी जी,
3: अब मेरे पास आ गए। मैं तो
1: अरे भाई अनारकर।
4: जी सर।
1: जरा इधर आओ।
4: जी सर।
1: ये लो ये फाइल बड़े साहब के पास ले जाना, और मेरे लिए एक गिलास पानी भी ले आना।
4: जी अच्छा।
5: एक्सक्यूज मी मिस्टर मांजरेकर।
1: जी आपने मुझसे कुछ कहा?
5: जी माफ कीजिए, मैं आपको कुछ तकलीफ दे रही हूँ, क्या आप मेरा एक काम करेंगे?
1: काम?
5: जी ये कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, डेटा ही नहीं मिल रहे, आप जरा देखिए ना इस फाइल को। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं?
1: किधर? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या कह रही थी आप?
5: नंबर्स मैच ही नहीं हो रहे हैं, यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो कृपया मेरी मदद कीजिए ना।
1: जी फाइल कहाँ है?
5: ले लीजिए।
1: एक मिनट है। हाँ ये देखिए, ये रही गड़बड़ी।
5: कहाँ? ये?
1: हाँ हाँ हाँ ये और ये जो हाँ नीचे, ये हैं आपके मिसिंग नंबर्स।
5: अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गए। मैंने 4 बार रिकैलकुलेशन किया और इस गलती पर ध्यान ही नहीं गया मेरा तो।
1: इसमें सब अटकते हैं, अनुभव से आता है, जल्दी सीख जाएंगे आप। ये आपकी फाइल।
5: थैंक यू।
1: नहीं नहीं थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे 6:30 बज भी गए। अच्छा मिस साने, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ, कल मिलते हैं।
5: मिस्टर मांजरेकर, एक मिनट रुकिए।
1: जी
5: मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ?
1: मेरे साथ मगर मैं।
5: चलिए मिस्टर मांजरेकर आइए।
1: जी जी जी

0: वैसे आप इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हैं?
1: कोई 2 वर्षों से। क्यों पूछ रही हैं आप?
0: नहीं कुछ नहीं, यही पूछा। अच्छा ऑफिस है।
1: हाँ वो तो है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 11:30 बजे से ऑफिस शुरू होता है, सुबह के ट्रैफिक से भी बच जाते हैं और शाम के पीक ट्रैफिक की भीड़ से भी।
0: ये तो है, कोई चाहे तो सुबह किसी दूसरी जगह भी काम कर सकता है।
1: आप बस कहाँ से लेती हैं?
0: मैं तो वो मंदिर वाले स्टैंड से लेती हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: मैं उल्टी साइड वाले स्टैंड से लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ फिर, है? नमस्ते।
0: अब आप कीजिए मिस्टर मांजरेकर, यदि आपको कुछ असुविधा ना हो तो हम कहीं चाय पी सकते हैं, आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा है।
1: बस यार वो मुझे आज
0: क्यों वाइफ ने आज जल्दी बुलाया है आपको?
1: नहीं नहीं वाइफ ने नहीं, वो मेरी दीदी ने बुलाया है, जल्दी पहुंचना है, कुछ काम था। अच्छा आज्ञा दीजिए हैं।
0: अच्छा
1: जी जी, कल मिलते हैं।
0: बाय
1: बाय बाय बाय बाय। ईश्वर मलाडली। दीदी दरवाजा खोलो। दीदी
2: आई।
3: अरे सचिन बहुत देर लगा दिया आज तूने।
1: हाँ दीदी जरा देर हो गई। अरे ये क्या दुकान खोल रखी है?
3: हम बच्चों के पेपर से जांचने बैठी थी। अच्छा तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ, अभी लाती हूँ। ये ले चाय।
1: दीदी
3: क्या हुआ?
1: दीदी अब तुम अपनी नौकरी छोड़ दो।
3: हाँ नौकरी छोड़ दो? सचिन बेकार की बातें मत कर। नौकरी छोड़कर घर बैठी बैठी क्या करूंगी? समय बिताने के लिए तो मैं नौकरी करती हूँ।
1: दीदी मगर तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है?
3: अरे उसमें काहे की तकलीफ, अब तो आदत हो गई है मुझे। जब से सवेरे का स्कूल हुआ है ना, क्या बताऊं, दोपहर काटनी मुश्किल हो जाती है।
1: दीदी तुमने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए हैं, मुझे पढ़ाने लिखाने के चक्कर में तुमने
3: शादी तक नहीं की, मेरे सुख के लिए तुमने इतने दुखों के पहाड़ सिर पर उठा लिए, वगैरह वगैरह। क्यों रे कैसी बच्चों सी बातें कर रहा है?
1: दीदी तुमने आज तक जो किया वो बहुत हुआ।
3: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन अब और नहीं, मेरी तनख्वाह इतनी तो है कि हम दोनों का निर्वाह अच्छी तरह हो सकता है ना?
3: ठीक है लेकिन मिस्टर सचिन मांजरेकर जी, घर में आपकी स्थिति का दिल नहीं लगता, इसीलिए वो नौकरी करती है।
1: मगर मैं चाहता हूँ कि अब तुम नौकरी छोड़ दो।
3: अच्छा तू कहता है तो नौकरी छोड़ दूंगी बस।
1: सचमुच?
3: बस रे तेरी शादी हो जाए, तेरा संसार बस जाए, फिर तू बाप बन जाए और मैं तेरे बच्चों को गोदी में लेकर लोरियां सुना सुना कर दिल बहला लूंगी।
1: दीदी क्या कह रही हो तुम, अपना सारा जीवन क्या मुझ पर उपकार करने में बिता दोगी?
3: सचिन अपने छोटे भाई पर कैसा उपकार रे, हम दो ही तो बचे हैं परिवार में। अच्छा सुन अब तू शादी कर ले ठीक। कहीं लड़की भी देखी है या नहीं?
1: क्या कहती हो दीदी, मेरे लिए लड़की देखना तो तुम्हारा काम है।
3: पगला कहीं का।
1: पगला?
3: अरे
1: कोई
3: लड़की पसंद तो नहीं कर रखी है तूने जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
1: नहीं दीदी ये क्या बोल रही हो तुम, सच बताओ जब तुमने मुझे पगला कहा तो मुझे कुछ याद आ गया।
3: क्या?
1: दीदी 15 दिन हुए हमारे ऑफिस में एक नई लड़की आई है, दिखने में सुंदर है, काम भी बड़ी अच्छी तरह से करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कहते हैं कि वो पगली है।
3: पगली?
1: हाँ दीदी, खूबसूरती और पागलपन का ये मेल कुछ अजीब सा लगता है।
3: लेकिन सचिन हर कोई उसे पगली क्यों बोलता है रे?

0: दी अगर वो हर किसी से ये पूछती फिरे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे तो लोग तो पागल ही समझेंगे ना। अरे
1: ऐसा क्या तुझसे भी पूछा?
0: अभी तक तो मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मेरे ऑफिस के कर्णिक और बापट से उसने पूछा था।
1: बड़ी विचित्र सी लगती है लड़की, उसको नौकरी ऐसे मिल गई भाई।
0: दीदी यही तो मेरी समझ में भी नहीं आया। कहते हैं कि उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ था और हमारे साहब उस पर बहुत ही खुश हुए। जाने दो ना। खैर दीदी तुम्हारे स्कूल में एक टीचर की जरूरत थी ना, वो बापट बोल रहा था कि उसकी चचेरी बहन।
1: देर हो गई है रे, कल ही एक टीचर को अपॉइंट कर लिया है, बहुत अच्छी है, BA BT, नाम भी बहुत प्यारा सा है, विभावरी, विभावरी साने।
0: साने? विभावरी साने? दीदी मैं अभी जिस लड़की के बारे में बता रहा था ना, वही ऑफिस वाली पगली।
1: हाँ हाँ,
0: उसका पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं, मगर सब उसे मिस साने ही कहते हैं।
1: तुम्हारी मिस साने होगी पगली, मगर हमारी विभावरी साने पगली नहीं है, वो तो बहुत समझदार और संस्कारी है। और हाँ, खूबसूरती बहुत है।
0: अच्छा, अजीब संयोग पर संयोग है, आपके यहाँ भी मिस साने, मेरे यहाँ भी मिस साने, एक ही दिन में दो साने।
1: सुन सचिन, विभावरी साने अभी अनमैरिड है, बात चलाऊं?
0: लो अभी तो मैं दो दो साने के चक्कर में ही घन चक्कर हो गया हूँ, और तुम हो कि एक साने को घर में दुल्हन बनाकर लाने के चक्कर में पड़ गई। दीदी साने के बाकी गाने हम फिर किसी दिन गा लेंगे ना।
1: अरे जाकर देख ले एक बार उसका घर, पता है उसका मेरे पास। एक काम कर, परसों रविवार है, है? विभावरी के घर हुआ।
0: पागल तो नहीं हो गई हो? वहां जाकर क्या बोलूंगा मैं दीदी? विभावरी जी, मेरी दीदी आपसे मेरी शादी करवाने की सोच रही है, मैं इसलिए आपका घर देखने आया हूँ। क्या सोचेगी वो?
1: अरे पागल, तू बोलेगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर की तलाश है, इसलिए आपके पास आया हूँ।
0: ए लो जी, अब मेरी बेटी भी पैदा करवा दी, शादी तो होने दो मेरी।
1: इसीलिए तो कह रही हूँ, रविवार को विभावरी साने का घर देखा, अरे मिल तो आ, वरना तेरी वाली मिस साने जैसी ना मिल जाए कोई। और हाँ हाँ सुन, याद आया, एक फाइल भी मंगवानी है उसके पास से, उसी को लाने के लिए मेरा दूत बनकर चले जाना।
0: अच्छा बाबा, चला जाऊंगा। क्या बनाया आज खाने में?
1: तेरी पसंद की सब चीजें बनाई है, चल आ जा।
0: मेरा नाम सचिन मांजरेकर है।
2: सचिन तेंदुलकर को तो मैं जानती हूँ, महान क्रिकेटर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी। संजय मांजरेकर जी को क्रिकेट की कमेंट्री करते देखा है, आप तो आधा उधर के और आधा इधर के हो गए। देखिए मिस्टर, आधा वो आधा ये, अगर आप कोई सामान बेचने आए हैं तो यहाँ आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली। दीदी आपको देखते क्या बोलेगी मालूम? आगे जा रहे बाबा।
0: आपकी दीदी विभावरी साने ऐसा बोलती है मुन्नी?
2: अच्छा, तो आप मेरी दीदी को जानते हैं?
0: वो घर पर है क्या?
2: वो घर पर तो नहीं है, आने वाली होंगी। लेकिन उनके आने से पहले मैं एक बात हमेशा के लिए क्लियर कर दूं कि मेरा नाम मुन्नी नहीं सुरेखा है। क्या नाम है मेरा?
0: सुरेखा।
2: वेरी गुड मेमोरी, गुड बॉय।
0: थैंक यू।
2: अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि दरवाजा खोलो?
0: जी।
2: तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब दीदी घर में नहीं होती तो मैं यूं ही ग्रिल के अंदर से बात करती हूँ।
0: ओ,
2: अनजान लोगों के लिए दरवाजा खोलने का मतलब है रात में क्राइम सीरियल में आपकी खबर, आप भी नहीं खोलना।

0: नहीं खोलूंगा। क्या तुम विभावरी साने की बहन हो?
1: लेकिन मैं उन्हें विभावरी साने नहीं, दीदी कहती हूँ।
0: अच्छा, बड़ी होशियार हो तुम।
1: ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि
0: अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम?
1: मैं होशियार हूँ।
0: हाँ ठीक है। अच्छा सुरेखा, ये तो बताओ कि तुम्हारी दीदी कब लौटेंगी?
1: बस अब वो आती ही होंगी। वो कह गई हैं कि जल्दी लौटूंगी। हमारी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मिठाई लाऊंगी ऐसा कहती है तो वो जरूर ले आती है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, और अगर रुकना है तो बातें करते हैं तब तक, ठीक?
0: हाँ एकदम ठीक।
1: तो आपको रुकना है, चलिए बातें करते हैं फिर। नाम तो आपने बता दिया,
0: हाँ
1: आप रहते कहाँ हैं? आप काम क्या करते हैं?
0: मैं यही मुंबई में रहता हूँ, और काम काम तो तुम्हारी दीदी को ही बताऊंगा। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारी दीदी जल्दी आएंगी या मैं जाऊं?
1: देखिए, दीदी कहती हैं किसी पर अपनी इच्छा कभी लादनी नहीं चाहिए। आपको जाना है तो जाइए।
0: अच्छा सुरेखा, दीदी स्कूल गई है क्या?
1: अरे आज तो रविवार है, आज क्या वहाँ झाड़ू लगाने जाएंगी? रविवार को छुट्टी होती है।
0: सॉरी सॉरी, भूल गया था।
1: फिर तो आप सुबह योगा किया करें, याददाश्त ठीक होती है। आपका नाम सचिन मांजरेकर है ना?
0: हाँ
1: मैं आपको कैसे बुलाऊं? आपका नाम तो ले नहीं सकती, मेरी दीदी ने कहा
0: कि
1: है।
0: बच्चे बड़ों के नाम नहीं लेते, यही ना?
1: हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम?
0: क्योंकि जैसे आपकी एक दीदी है ना, वैसे ही मेरी भी एक दीदी है।
1: आपकी भी बड़ों की भी दीदी होती है?
0: हाँ
1: गुड। दीदी, मेरी दीदी आ गई। दीदी ये है
2: मिस्टर मांसरेकर।
0: मिस साने,
2: आप यहाँ?
0: आप यहाँ?
2: आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ रहती हूँ?
0: देखिए सच कहूं, मैं तो विभावरी साने से मिलने आया था, लेकिन तुम, अब आप, मुझसे ही गलती हो गई। ऑफिस में आपको सब मिस साने कहकर पुकारते हैं, आपका पूरा नाम मुझे मालूम ही नहीं था।
1: दीदी ये बड़ी अजीब बातें करते हैं कि इनकी भी दीदी है, और इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि रविवार को स्कूल की छुट्टी होती है। मैंने जब इनसे पूछा कि मैं इन्हें क्या कहकर बुलाऊं, तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया।
2: सुरेखा तुम अंदर जाओ। मिस्टर मानसिक आइए, अंदर आइए,
0: थैंक
2: आइए बैठिए। आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया?
0: यू। स्नेहलता मांजरेकर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, ऑफिस की फाइल के लिए। नहीं, ट्यूटर के लिए नहीं, फाइल, ट्यूटर।
2: स्नेहलता मांजरेकर आपकी?
0: वो मेरी दीदी हैं।
2: ओह अच्छा। चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो?
0: आपके बारे में
2: मेरे बारे में क्या?
0: सोच रहा था कि
2: मैं दो जगह नौकरी क्यों करती हूं?
0: जी,
2: अपना संसार चलाने के लिए। मेरे माता पिता अब नहीं रहे, और छोटे भाई बहनों की शिक्षा का भार मुझको ही उठाना है।
0: मैं समझ सकता हूं। मेरी दीदी ने भी मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, और आज भी कष्ट उठा रही हैं। दुनिया के सारे कष्ट उन्होंने अपने हिस्से में रखकर मुझे सुखी बनाया।
2: परिस्थितियों के आगे हर किसी को माथा झुकाना पड़ता है।
0: ठीक कहा, दीदी कहती हैं परिस्थितियों के प्रवाह में बहते चले जाना ही जीवन है। एक बात पूछूं मिस्सा ने,
2: जी
0: करणिक और कुछ और लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं।
2: क्या कहती हूँ?
0: कहते हैं कि आप
2: पगली है।
0: जी,
2: ठीक ही तो कहते हैं।
0: यानी सचमुच आप,
2: करना पड़ता है, करना पड़ता है। अपने आप को अपने कर्तव्य के पथ पर सजग बनाए रखने के लिए करना पड़ता है सचिन।

0: समझा नहीं।
1: सुंदरता कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है। कर्णिक और बापट जैसे

0: मेरे कर्तव्यों का पथ स्वीकार ना हो, मेरी जिम्मेदारियों का एहसास ना हो तो क्या होगा? सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। मैं
1: लेकिन लोग तो पगली समझते हैं तुम्हें।
0: मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे अपने छोटे भाइयों और बहनों से वास्ता है। क्या आप भी मुझे पगली समझते हैं?
1: हाँ? नहीं, मुझे इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ और इसी वजह से कर्णिक से झगड़ा भी हुआ था।
0: मेरे लिए
1: मिसाने, मुझे अब आपके बारे में सोचकर अजीब लग रहा है। दुख भी, सहानुभूति भी, इज्जत भी, सम्मान भी।
0: और कौन है? बोलो।
1: विभावरी, मेरी दीदी का एग्जाम्पल मेरे सामने है, जिसने अपने भाई के लिए अपना जीवन मिटा डाला, और शायद तुम भी उसी रास्ते पर हो। विभावरी, एक बात पूछूं? मुझसे शादी करोगी?
0: सच्ची?
1: मुझे भी तुम अपने कर्तव्य में हिस्सा लेने की स्वीकृति दो। तुमको अपने परिवार में पाकर मेरी दीदी को बहुत खुशी होगी, सुख पहुंचेगा। और फिर अरे
0: आप भी पागल हैं।
1: पागल?
0: हाँ पागल, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछने की वजह से लोग मुझे पगली कहते हैं, और अब तुम भी।
1: विभावरी, तो फिर क्या सोचा तुमने?
0: दीदी से भी तो पूछ लेना चाहिए ना।
1: सच? विभावरी, मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं।
0: सचिन,
1: विभावरी, क्या हम दीदी के पास अभी चल सकते हैं?
0: अभी?
1: हाँ अभी।
0: ठीक है, चलो।
1: लेकिन वहां हंसने का पागलपन मत करना।
0: हाँ तुम भी ये फाइल ट्यूटर मत करना।
1: नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। चले।
2: पगली, अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। ये नाटक देवदत्त हरिभाव रुकड़ीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। जोशी की भूमिका में थे कीमती आनंद, देशमुख अशोक मलकानी, बापट राजेश काम्बोज, स्नेहलता सुचित्रा गुप्ता, मांजरेकर अनुराग अरोड़ा, कर्णिक संजय वर्मा, विभावरी साने कुमकुम जैन, और सुरेखा की भूमिका में थी बेबी सारा माइणकर। प्रस्तुतिकरण सहयोग शिवाली का था और इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।
3: 26 update, and before that the station identity, and the update shall be followed by the normal Western music programming.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, खेल की दुनिया से इस वक्त की सबसे अहम रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। एक तरफ जापान की धरती और आईची नागोया का खेल मैदान है, तो दूसरी तरफ हर खेल में पदक की उम्मीद में धक धक करती करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है। आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 का औपचारिक उद्घाटन और दो दिन पहले शुरुआती मुकाबलों के रोमांच के बाद आज से महामुकाबले और पदकों की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की होड़ शुरू हो चुकी है।
2: एशिया के 45 देशों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट यहां जुटे हैं। 43 खेलों के कुल 469 मेडल इवेंट में हर खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है।
1: तो अब आज की सुर्खियां। भारत ने शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल पर साधा निशाना। एलेवेनिल वलारिवन रिवीमेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 0.6 अंक से गोल्ड से चूकी। एलेवेनिल सोनम मस्कर और विदार्सा विनोद को टीम इवेंट में भी सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सुचिका दरियाल ने इतिहास रचा, सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची, खिताब के लिए श्रीलंका से होगा मुकाबला। हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों का धमाकेदार आगाज, अपने अपने वर्गों में हासिल की बड़ी जीत। और बैडमिंटन में महिला टीम ने अपना पहला मैच आसानी से जीता, अब जापान से अगला मुकाबला।
2: वक्त बदल रहा है और खेल भी। इस साल एशियन गेम्स में 6 नए खेलों को पहली बार मेडल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। ये खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पैडल, सर्फिंग, टेक बॉल, वर्चुअल टाइकोंडो और बीएमएक्स फ्रीस्टाइल। भले ही खेल नए हो, लेकिन भारतीयों का जज्बा पुराना और आक्रामक है। जापान की धरती पर इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला पदक सुचिका तरियाल ने पक्का कर लिया है। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दुनिया को बता दिया है कि नए दौर के नए खेलों में भी भारत किसी से पीछे नहीं है। एमएमए में सुचिका की सफलता के बारे में बता रही हैं कविता शर्मा। आईची नागोया एशियन गेम्स में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत के लिए आज का दिन मिलाजुला रहा। महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के 36 वर्षीय सुचिका तारियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की अल्तानची मेग बैगलमा को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ सुचिका ने एशियन गेम्स के इतिहास में एमएमए में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है, इसीलिए सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय हो चुका है। वहीं पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल का अभियान मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वजन वर्ग में आने के लिए वजन घटाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। मेडिकल जांच के बाद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और बाद में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस तरह सुचिका ने इतिहास रचा, तो दूसरी तरफ वरुण के लिए दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भारत की नज़र अब सुचिका के सेमीफाइनल मुकाबले पर है।
1: सुचिका ने इन खेलों में भारत का पहला मेडल भले पक्का किया, लेकिन पहला मेडल शूटिंग में मिला। कमाल के मेंटल स्ट्रेंथ और सटीक निशाने साधने के इस खेल में पहले दिन भारत की सफलता की जानकारी दे रहे हैं दर्पण तिकिया।
3: एशियन गेम्स 2026 में सफलता का पहला समाचार शूटिंग रेंज से आया है। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धाओं में महिला निशानेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाए हैं 2 सिल्वर मेडल। पहला टीम इवेंट में एलावनिल वलारिवन, सोनम मास्कर और विदर्सा विनोद की तिगड़ी के नाम रहा। भारतीय टीम ने पिछले एशियन गेम्स रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए कुल 1898 अंक हासिल किए। हालांकि चीन से आने वाली तिगड़ी ने 1904.2 अंक हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सोनम मास्कर ने क्वालिफाइंग एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 634.1 अंक हासिल किए। वहीं दिग्गज खिलाड़ी एलावलिन ने 633.5 तो विदर्सा ने 630.4 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के चलते एलावलिन और सोनम 10 मीटर एयर राइफल के वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई की। एकल प्रतियोगिता के फाइनल में जहां सोनम के हाथ छठा पायदान लगा, तो वहीं एलावनील लगातार गोल्ड मेडल पोजीशन पर बरकरार रही। हालांकि उनके अंतिम कुछ शॉट निशाने से अंश मात्र ही भटके और वो मेजबान जापान की हिनाटा ताइची से 0.6 अंकों से पिछड़ गईं। कुल 253 अंक हासिल कर ताइची ने नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया और स्वर्ण पदक

0: आपने नाम किया। तो वहीं भारत की एलावेनिल वलारिवन के हाथ सिल्वर मेडल लगा। जापान जाने से पहले उन्होंने यही बताया था दैट शी इज ट्राइंग टू स्टे इन द प्रेजेंट।
1: मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो वो मेरे उस दिन के लिए काफी रहेगा एंड मैं बस उसी पे फोकस कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर रहे।
2: एशियन गेम्स के जरिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम्स ने अपने अभियान की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप की। महिला टीम ने ग्रुप के अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को तो पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को टिकने का मौका ही नहीं दिया, बता रही हैं अमीषा।
3: भारतीय महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए पूल बी के ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 के बेहद विशाल अंतर से मात दी, जिसमें भारतीय फॉरवर्ड दीपिका सहरावत ने इंडिविजुअल 8 गोल दागे, जिसमें 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आए। ये किसी भी महिला हॉकी फील्ड मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा किया गया विश्व रिकॉर्ड जैसा एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन है। इसके अलावा इशिका चौधरी ने एक शानदार हैट्रिक लगाई। वहीं लाल रम सियामी, बलजीत कौर, नेहा गोयल, लाल थंथलुंगी और साक्षी राणा ने भी गोल करने में अपना योगदान दिया। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया था और पहले हाफ में ही 8-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, जो दूसरे हाफ में 11 गोल्स के साथ 19-0 हो गई। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला ग्रुप स्टेज मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ मेंस हॉकी में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने अपने पूल ए के ग्रुप मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से शिकस्त दी, जिसमें दिलप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए 4 शानदार गोल दागे। भारत ने शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाते हुए हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली थी, जो सेकेंड हाफ के अंत तक 13-1 हो गई। इस मैच में 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किए, जिसमें दिलप्रीत के अलावा अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह शामिल थे। इस जीत के बाद भारत का अगला ग्रुप स्टेज मैच 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा।
2: टेबल टेनिस में भी भारत की दोनों ही वर्गों में धमाकेदार शुरुआत हुई। इस खेल में मजबूत शुरुआत महिला टीम ने की। भारतीय टीम ने ग्रुप एफ के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 3-0 की करारी शिकस्त दी। पहले मैच में शिजा अकुला ने अपनी प्रतिद्वंदी एन महरानी को करारी शिकस्त दी। शिजा ने यह मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में दिया चिताले ने अपनी प्रतिद्वंदी अलमायरा नेबुच डनेजर को पांच जमाने का भी मौका नहीं दिया। दिया ने अपनी विरोधी को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी। इसके बाद बारी थी अनुभवी यशस्विनी घोरपड़े की। उन्होंने भी निराश नहीं किया और इंडोनेशियाई खिलाड़ी चित्रा रश्मि का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। ग्रुप बी के दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम ने 14वीं रैंकिंग वाली टीम सिंगापुर को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 शिकस्त देकर दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने पहला मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में शिजा अकुला को लॉय मिंग ने 2-3 से हराया। टाई का तीसरा मैच सिंगापुर की तेंझाओ ने दिया चिताले को 3-1 से हराकर जीता। चौथे मुकाबले में शिजा अकुला ने भारत को वापसी कराई। उन्होंने जेंग जियान के खिलाफ ये मैच 3-1 से जीता। टाई 2-2 पर पहुंच गया। अब बारी थी पांचवें यानी निर्णायक मुकाबले की। यशस्विनी घोरपड़े का सामना 15 साल की लॉय मिंग से था। हर खेल प्रेमी की धड़कन बढ़ी हुई थी। इसी बीच लॉय मिंग ने पहला गेम 11-5 से जीत कर बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद यशस्विनी ने 11-8, 12-10 से जीत हासिल कर वापसी की। फिर मिंग ने चौथा गेम 4-11 से जीत लिया। मैच का फैसला पांचवें गेम पर पहुंचा। इसे यशस्विनी ने 11-9 से जीत कर भारत को लगातार दूसरा मैच जिता दिया। भारतीय पुरुष टीम ने भी जीत से शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहला मैच जी साथियान और मोहम्मद नेगारा के बीच खेला गया, जिसे जी साथियान ने 3-0 से आसानी से जीता और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मानव ठक्कर और मोहम्मद जुनिंद्रा के बीच खेला गया दूसरा मैच बेहद नजदीकी रहा। इस रोमांचक मुकाबले में मानव ने 3-2 से जीत हासिल की। तीसरा मैच मानुष शाह और अफान प्रातामा के बीच खेला गया, जिसे मानुष शाह ने 3-0 से जीत कर भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि दूसरे मुकाबले में 15वीं रैंकिंग वाले भारत को 20वीं रैंक वाली टीम ईरान ने एक तरफा अंदाज में 3-0 से हराया। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने उम्मीदों के अनुरूप अपने अभियान का आगाज किया है, बता रही हैं अमीषा।
3: 20वें एशियन गेम्स आईची नागोया में बैडमिंटन के विमेंस टीम इवेंट के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इंडियन

0: ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। इस पूरे टाइम में इंडियन शटलर्स ने शुरुआत से ही कोर्ट पर अपना फुल कंट्रोल बनाए रखा। मैच की शुरुआत की भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने। सिंधु ने कजाकिस्तान की कामिला समागुलोवा को स्ट्रेट सेट्स में 21-7, 21-9 से हराकर भारत को 1-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरी सिंगल्स खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्नति ने अपनी रफ्तार और सटीक स्मैश के दम पर कजाकिस्तान की अलीसा कुलेशोवा को 21-7 और 21-10 से हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। इस समय मुकाबला पूरी तरह भारत की झोली में था और फिर आखिर में जीत की इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए कोर्ट पर उतरी युवा शटलर तन्वी शर्मा। तन्वी ने कजाकिस्तान की विपक्षी खिलाड़ी जियाना नामेनोवा को 21-5 और 21-10 से एक तरफा मुकाबले में हराकर मैच अपने नाम कर लिया, जिसके चलते भारत 3-0 से अजेय बढ़त बना पाया और क्वार्टर फाइनल्स का टिकट कन्फर्म किया। अब इंडियन टीम इसी जीत के इरादे से 22 सितंबर को होस्ट कंट्री यानी जापान से भिड़ेगी।
1: शारीरिक चपलता और स्टेमिना के खेल टेकबॉल में हम ऐतिहासिक पदक के करीब पहुंचकर चूक गए, परिणाम के बारे में बता रही हैं कविता।
2: डेब्यू हुए टेकबॉल से पदक की उम्मीदें थी, लेकिन दिन की शुरुआत निराशा के साथ हुई। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युएना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में सीधे हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विंसी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। इसी के साथ टेकबॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल्स का, जहां एक और कांस्य पदक दांव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई। मिक्स डबल्स में क्विंसी और मोहम्मद अनस इमरान बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9, 12-6 से हार कर बाहर हो गई। ये अभियान यहाँ जरूर समाप्त हुआ, लेकिन क्विंसी ने अपने मुकाबले जीतने के लिए पूरी मशक्कत की। क्विंसी लगातार मुकाबलों के बीच दर्द में दिखी, जहाँ मुकाबला कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा। खेल के दौरान क्विंसी का दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसका नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिला, और इस तरह से एशियन गेम्स में टेकबॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया। पर भले ही ये खिलाड़ी मुकाबला हार गई हो, लेकिन खेलों के एक नए रूप टेकबॉल की पहचान जरूर बन गई।
1: तैराकी में इस बार भारतीय दल बड़ी उम्मीदों के साथ उतरा है। इस दल को न सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करना है, बल्कि पदक जीत कर भी लाना है। हालांकि पहले दिन तैराकी में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पुरुष 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास ने हीट में शुरुआत तो अच्छी की और कमाल का प्रदर्शन करते हुए 54.85 सेकंड का समय निकाला। वे अपनी हीट में तीसरे और ओवरऑल 5वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। हालांकि पदक की दौड़ में वे चीनी और जापानी खिलाड़ियों की तगड़ी चुनौती के बीच पोडियम तक नहीं पहुंच सके। फाइनल में ऋषभ ने टाइमिंग के लिहाज से अपने प्रदर्शन को और निखारा, फिर भी वे 54.77 सेकंड का समय लेकर 9 खिलाड़ियों के मुकाबले में 6ठे स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा के हीट में उत्कर्ष पाटिल ने 56.19 सेकंड का समय लिया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। इस तरह वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष 100 मीटर फ्री स्टाइल में रोहित बेनेडिक्टन अपनी हीट में 50.25 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान पर रहे। वो ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। इसी इवेंट में आकाश मणि ने 50.85 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में 8वें स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन से वे भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अपने खिताब के बचाव के लिए उतरी महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ 2-2 हाथ किया और जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गई है। अमीषा की रिपोर्ट।
0: आज जापान के कुरुगी स्पोर्ट्स पार्क में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जब बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद शतक लगाकर शिफाली वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। शिफाली ने मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी गेंदबाजों की थी। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम भारतीय गेंदबाजी और बड़े लक्ष्य के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई और महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और भारत ने 114 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर

0: किया। इस जीत के साथ अब भारत अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुका है, पर अब उनका लक्ष्य अपना गोल्ड मेडल बचाने पर होगा।
1: वुशु में भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, बता रही हैं कविता।
2: भारतीय वुशु खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम, अपर्णा धैया और विक्रांत बालियान अपने अपने मुकाबलों में पदक की दौड़ से बाहर हो गए। दिन की शुरुआत पुरुषों के चांगक्वान फाइनल से हुई, जहां भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम ने 21 खिलाड़ियों के बीच 9.683 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। सूरज ने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5.000 और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2.000 अंक हासिल किए, जबकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर 2.683 रहा। इसके बाद महिलाओं की 52 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में भारत की अपर्णा धैया का मुकाबला ईरान की सोगंध सिंकाई चेतान से हुआ। राउंड ऑफ 16 में अपर्णा को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों राउंड में उन्हें 5-0 के स्कोर से हार मिली और इसके साथ ही उनका एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। वहीं पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसवी से हुआ। विक्रांत को भी राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह 20 सितंबर को भारतीय वुशु के तीनों मुकाबलों में भारत को जीत नहीं मिल पाई।
1: और अब बात कल के मुकाबलों की। सेपक टेकरा में भारतीय पुरुष रेगु टीम की भिड़ंत ग्रुप बी में जापान से होगी। शॉप टेनिस में मिक्स डबल्स में जय मीणा और आद्या तिवारी का सामना ग्रुप बी में कंबोडिया से होगा। फिर ये भारतीय जोड़ी मंगोलिया के साथ खेलेगी, इन्हें दक्षिण कोरिया से भी मैच खेलना है। वुशु में नियमान वाक्सु महिला चेंगक्वान में चुनौती रखेंगी। पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में आर्यन राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी का सामना करेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन, पार्थ मान्य और रुद्रांश पाटिल निशाना साधेंगे। पुरुषों के स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन टीम फाइनल के पहले दिन अनंतजीत सिंह नारूका, भवतेक सिंह गिल और मैराज अहमद खान की चुनौती होगी। इसी इवेंट के महिला वर्ग में महेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल के साथ साथ रैजा ढिल्लन निशाने साधेंगी। महिला टेबल टेनिस में भारत का सामना ग्रुप एफ में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तैराकी में पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के हीट 2 में ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज स्विमिंग पूल में होंगे। पुरुष फ्री स्टाइल के हीट 2 में आकाश मणि उतरेंगे। हीट 4 में गीतेश हीरशाह भारत की चुनौती रखेंगे। पुरुषों की ब्रेस्ट स्ट्रोक में हीट 1 में दानुष सुरेश उतरेंगे। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले के हीट 2 में वेदांत माधवन, दक्षिण शशि कुमार, अनीश गौड़ा और साजन प्रकाश की चौकड़ी होगी। MMA के महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तरियाल ईरानी प्रतिद्वंदी से मुकाबला करेंगी। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना इंडोनेशिया से होगा। कबड्डी में पुरुष टीम का ग्रुप ए में जापान से मुकाबला होगा। महिला टीम ग्रुप ए में बांग्लादेश के साथ 2-2 हाथ करेगी। वुशु में रोशिबीना देवी महिलाओं के 60 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में बांग्लादेश की खिलाड़ी का सामना करेंगी। बॉक्सिंग में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में पहले मैच में सुमित थाईलैंड के सिंसिरी का सामना करेंगे। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी।
0: तो अब बात करते हैं मेडल्स टैली की। चाइना 11 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ कुल 20 मेडल्स जीतकर टॉप पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर जापान है, जिसके पास भी कुल 20 मेडल्स हैं, लेकिन 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ वे चाइना से पीछे है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जिन्होंने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ कुल 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। वहीं अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत फिलहाल 10वीं पोजीशन पर बना हुआ है, जहां भारत के खाते में अभी तक कुल 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं और देश को अभी अपने पहले गोल्ड का इंतजार है।
1: तो भारतीय खिलाड़ियों की जीत की ये शुरुआत तो बस एक झांकी है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। हमारे पदक वीरों को आपकी दुआओं और चीयर्स की जरूरत है। अब जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह 9:30 बजे हर घंटे हम आईची नागोया एशियन गेम्स की हर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिर रात 10 बजे दिन भर की रिपोर्ट लेकर उपस्थित होंगे। अभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और अमिशा पटेल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।
4: ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం నిలయంలో సమయం 10:20.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय

0: चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनके यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
1: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स आईआईसीए ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
0: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे